स्वामी जिस गुरु सिख गुरु उपदेश सुनावे जन नाबिक धूड़ मंगे तिस गुरु सिख की जन नाबिक धूड़ मंगे

सब समान मोली धरती मोले आकाश मोली धरती मोले आकाश मोली धरती मोले आकाश मोली धरती मोले।

परम सत्कारयोग सत्संग जीओ, आओ हुण आपां भाई जसवीर सिंह जी पौंटा साहिब वाले पास्यों शब्द कीर्तन सरवण करिए।

0: पार्वत देव सबे मुल इंद्र महाशिव जो करी केड़ा अंत न पारा वारिया
1: अंत न
0: पावत देव सबे अंत न पावत देव सबे।

जिन्ना चिर यह परिपूर्ण परमात्मा अकाल पुरख के चरणों नाल जुड़िया है, मेरा खालसा यह मेरा ही रूप है। पर जदों यह भरमां विच वहमां विच पै गया, गुगे जठेरे मनन लग पिया, मड़ी मसाणी मनन लग पिया।

गरीब है, गरीबी घर विच एडी एडी है कि अपने मोढ़ियां तो भी उची हो गई है। ये जो गोलक है, ये गुरु घर की जो माया है, ये इना गरीबा वास्ते, मजलूमा वास्ते, लंगर वास्ते, जो पीड़ित लोग हन, ये सत्संग जीओ, ये जो गोलक है,

0: DM Music पेश कर देने शब्द गुरबाणी गुरु रामदास राखो सरनाई
1: गुरु रामदास राखो सरनाई
0: भाई किशन पाल सिंह जी दी रस भिन्नी आवाज विच
1: राखो सरनाई
0: ए पेशकश

धन गुरु तेग बहादुर सोच लै भाई धर लै अपने मन विच इस नूं धर लै मतलब वसा लै मन विच सिर्फ चार दिनां दी गल बंदा नाल तकबर भरिया कूड़े करदा माणे मैं हां चतर सियाणा सुंदर शेर आप नूं जाने आकड़ आकड़ चले किसे दे नक तले नहीं आने साई लोका जद फूका निकले आवे होश ठकाने ये बंदा जिन्ना मर्जी मान कर लवे पर उदो तक है जदो सब कुछ ठीक है जदो थोड़ी भी चीज गलत हो जावे कहता जी मैं बड़ा तकड़ा हां बलवान हां पर एक दिन मंजे ते पैजे निढाल हो जाता है। धन गुरु तेग बहादुर मसालो अपने मन में राग सिंधी आस

छाए छुट्टड़ होई मक्खन लया विरोल कै छाए छुट्टड़ होई पीड़ लई रस गन्नेओ छिलछू है न कोई रंग मजीठों निकले अड लहे न सोई वास लई फुलवाड़ियों फिर मिले न टोई काया हंस विछुन्या टिस्को न सथोई

ते हलत मन सुगावे। ठंडा तत्ता कोयला काला करके हथ जलावे। ज्यू चक चूंदर सप दी अन्ना कोड़ी कर दिखलावे। जान रसौली देह विच वटी पीड़ रखी शर्मावे। वंश कपूत कुलछना छड़ियां बने न विच समावे।

जैसे घाव घायल कै जतन कै निको हो, पीर मिट जाए लीक मिटत न पेखी है। जैसे घाव घायल कै जतन कै निको हो, पीर मिट जाए लीक मिटत न पेखी है। जैसे फाटो अंबर सियाए पुन ओडियत, नांगो तो न होए तो ठेगरी परेखी। जैसे फूटो बासन सवार देत है ठठेरो, गिरत न पानी पे गठीलो पेख पेखी है। तैसे गुरशरण विमुख

वंशघात अपराध करारे, मद पी जुए खेल दे जोहन पर नारे, मोहन पराए लक्ष्मी ठग चोर चगारे, विश्वास ध्रोई आकृत घन पापी हत्यारे, लख करोड़ी जोड़ियन

फिर चक्की चट्टे कुत्ता राज बहा लिए फिर चक्की चट्टे सप्पे दूध पिया लिए व्यो मुखों सुटे सप्पे दूध पिया लिए विहो मुखों सटे पत्थर पानी रखिए मन हठ न घटे चोआ चंदन पर हरे खरखे पलटे क्यों निंदक पर निंदो हठ मूल न हटे अपन हथी अपनी जड़ आप उपटे।

डौरी देख के कर दे परवासा, थल विच तपन पठिया क्यों लहे प्यासा, सोने राज कमाई है कर भोग बिलासा।

लगी बरसन लक्ष्मी। बाबे दा आना सुन के सारे लोग उधर नू आ गए जिधर गरीब नू आज पातशाह बैठे सन। लगी बरसन

जिस वेले भगतियां ने तकिया भी जिदे विच लोक माया पा रहे ने ओ लोटा किधर चला गया ते भाई साहब कहंदे ने ओ भगतियां नू ओ भगत पौनी भुल गई ना उताल रहा ना उराग रहा।

खादी खून सुजुगी सिरा। जिस वेले बंदे नू अपनी हार हुंदी दिस पवे ना, ए आम बात है, फिर वो झगड़े ते उतर आंदा है। और तां पेश जांदी कोई नहीं। जोगियां ने गुरु नानक बाबा नाल बहस करनी शुरू कर दित्ती। भाई साहब भाई गुरदास जी कह रहे ने, कैसी बात सुनना, जरा प्यार नाल सुनना। कहंदे ने खादी खून

करके उड़न पंखी। भाई साहब कहंदे ने कोई उड़न वाला पंछी बन रहा है, कोई बघियाड़ बन रहा है, कोई चीता बन रहा है, कोई शेर बन रहा है। एक पर कर करके

मैनू ते आसरा गुरु की संगत दा बाणी दा उस निरंकार वाहेगुरु दा आसरा। शिव रूपी करता पुरुष चले नाहीं धरत चलाई, सिद्ध तंत्र मंत्र कर चढ़ पे। रिधियां सिद्धियां दे मालक बने बैठे सन, गुरु नानक नु डरा रहे सन। भाई गुरदास कह रहे हैं सिद्ध तंत्र मंत्र।

बाबा जी जिस वेले मुल्तान गए ना ते उथे दे पीरा नु पता लगा के वड्डा पीर आया एदे अगे साडी दाल नहीं गलनी ते उन्हां ने अपने एक सेवक नु अपने चेले नु एक दुध दा छन्ना भर के भेजिया जिदा मतलब सी भी पीरीपुर मुल्तान इथे तेरी लोड़ ही नहीं इथे अगे पीरा नाल भरिया पिया तेरी की।

उस वे मां ने पिट से हथ रखिया कह लगी कलाकार मैं कोई नहीं हूं तेरे मन च भुलेखा ना रह जा मैं कलाकार कोई नहीं हां मेरे अंदर जिसने घड़िया सी ना तेनू असली कलाकार मत हंकार में आई मेरे अंदर पै हो तेन वो घड़ रहा सी ते तेरे हथा च बैठा वो पत्थर के बुद्ध भी घड़ सकता है तेरे हथा च बैठा वो चित्र भी घड़ सकता है असली कलाकार तो है मत किते भुलेखे भरिया हंकार नाल भर जावे अज तू मेरे नाल ते बाप नाल उच्चा होने की कोशिश कर रहे है कल निरंकार नू चैलेंज कर पवे ईश्वर नू चैलेंज कर पवे प्रभु नू चैलेंज कर पवे ना काका किते हंकार च ना भर जा तू फिर बच्चा ही है तू फिर बाल ही आपा सारे बाल ही असली कलाकार असली घाटता करने वाला ते प्रतिपालना करने वाला तो वो है तेनू छोटे जैनू बाल रूप दे के ते फिर बाल तो जवान करना जवान तो तेरे बाप वर्गा महान करना है हाथ में मत किते भुलेखे च रही चेता यह बिरती बनी रहे ते बंदा बड़ा शांत रहता ते फिर तो मत लैण जोगा जी रहिंदा गुरु की मत लैण जोगा मापिया की गुरमत सुमत लैण जोगा प्रभु दे पैच भी रहेगा लेकिन जे बंदा हंकार नाल भर जावे समझे मैं ही कलाकार हां मेरी मत वधिया है फिर गुरु की मत किथे रखेगा मां बाप की सिख्या किथे रखेगा पहला तो यह समझ लई साडा जन्म अपने आप नहीं जन्म देने वाले मां बाप बैठे ने मां बाप के उत्ते वो बैठा है असली बाप बैठा है तू सांझा साहिब बाप हमारा नौ ने तेरे अखुट भंडारा तरह तरह के पदार्थ बख्शन वाला बैठा है जेता निगाह ओदे ते रही बड़ी शांति रहेगी महाराज सच्चे पातशाह उस ते निगाह पुआंदे कहिंदे ओदे बालक बन के रहिए।